FMN 14.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रसारण सभा आरंभ।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 14.2 MHz पर। प्रातः 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय

0: तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FMN 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले अपने देश, अपनी मातृभूमि को वंदन करते हुए आइए सुनते हैं ये मातृ

अभी आपने सुनी समूह स्वर में ही मातृवंदना। देश को वंदन करने के बाद आइए उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

शर्मा वंदु के स्वर में आपने अभी भक्ति रचना सुनी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

एमएस सुबलक्ष्मी की गाए इस भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। विषय है संतुलन। आलेख बसंत निर्गुण का है और

0: वाचक स्वर डॉक्टर अरविंद सोनी का।
1: जीवन में संतुलन का बहुत महत्व है। संतुलन ना हो तो जीवन बिखर जाता है। एक व्यक्ति मस्तिष्क का संतुलन खो देता है तो वो विक्षिप्त हो जाता है। इसी प्रकार संसार की हर वस्तु यदि संतुलन खो देती है तो वो बिखर जाती है, फिर चाहे वो पदार्थ हो, प्राणी हो अथवा प्रकृति हो। संतुलन की खूबी ये है कि वो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले तत्वों को बराबर रखता है, वस्तु को वस्तु और प्रकृति को प्रकृति। संतुलन प्रकृति का नियम है। अतियों पर प्रकृति स्वयं काबू रखने की क्षमता रखती है। प्रकृति हर वस्तु को उसके मूल स्वरूप में निर्दोष रखना चाहती है। संतुलन बिगड़ जाने पर विकृतियों का आना स्वाभाविक है। विकृतियों से प्रकृति परिचित होती है, वो उसका निदान भी जानती है। इसलिए प्रकृति नित्य सृजनरत, सक्रिय, संवेदनशील और सजग होती है। उसका हर कार्य समय पर निष्पादित होता है। प्रकृति और जीवन की एक लय होती है। उस लय में प्रकृति और जीवन लीन होता है, लेकिन अतियों के कारण प्रकृति और जीवन की लयबद्धता खंडित हो जाती है। असंतुलन प्रकृति और जीवन में व्यतिक्रम उत्पन्न कर देता है। आज प्रकृति और मनुष्य की प्रवृत्ति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रकृति और पर्यावरण प्रदूषण के शिकार हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जल की कमी हो रही है, पीने का शुद्ध पानी दुर्लभ हो रहा है, ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, विनाश के द्वार खुल गए हैं। आखिर मनुष्य जाए तो जाए कहां, किस जगह अपना सिर छिपाए? जब आदमी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने, उसे नष्ट करने के लिए तुला हो, अपने सपनों के महीन पर्दों में स्वयं ही आग लगा रहा हो, अपने सुखों को स्वयं सुखा रहा हो, तब कोई भगवान ही मनुष्य को बचा सकता है, अथवा उसे कोई मध्यम मार्ग ही बचा सकता है। जैसे बुद्ध ने संसार को एक मध्यम निकाय का मार्ग छठी शती में दिखाया था। मध्यम मार्ग निश्चित करने का विचार बुद्ध के मन में छोटे भाई शूण की घटना से आया था। इसकी भी एक कथा है जो जीवन में संतुलन की हिमायत करती है। कथा कहती है कि बुद्ध का एक छोटा भाई था। वह राजकुमार तो था ही, बेहद स्वेच्छाचारी था। मद्यपान और वेश्यागमन उसका शौक था। बुद्ध तब तथागत थे। शूण इस अति की जिंदगी से ऊब जाता है और तथागत के पास जाता है। शूण को देखकर बुद्ध को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर भी तथागत ने उससे स्वागत पूर्ण व्यवहार करके पूछा, कहो भाई मेरे पास कैसे आए? शूण ने कहा, भैया मैं अराजक जीवन से त्रस्त हो गया हूं। जीवन में कुछ शांति पाना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दे दीजिए। बुद्ध ने उससे कहा, पहले तुम्हें व्यसन छोड़ना होंगे। शूण ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसे नदी किनारे एक कुटिया में ठहरा दिया। तब शूण प्रायश्चित स्वरूप जमीन पर सोने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। दिन रात नदी के रेत में पड़ा रहता। कुछ दिन में वह सूख कर कांटा हो गया। एक दिन उसकी कुटिया के पास तथागत आए। उन्होंने शूण को मरणासन्न स्थिति में देखा। उसे देखकर बुद्ध के आंसू निकल आए। बोले, मेरा आशय सिर्फ व्यसन छोड़ने का था, तुमने अन्न जल तक छोड़ दिया। शरीर को चलाने के लिए अन्न जल दोनों जरूरी हैं। थोड़ी देर रुककर तथागत ने कहा, अच्छा शूण, तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, आज तुम मेरे लिए वीणा बजाओ। शूण वीणा के तार खींचने लगा। वीणा के तार मिल ही नहीं रहे थे। तथागत बीच में बोले, देखो राजकुमार शूण, जिस प्रकार वीणा के तार अधिक खिंच जाए तो भी ठीक से स्वर नहीं निकलता, और तार ढीले रह जाए तो भी स्वर नहीं सधता। स्वर मिलाने के लिए ना अधिक तानने और ना ढीला छोड़ने की जरूरत होती है। अतियों पर जीवन नहीं चलता, इसके लिए मध्यम मार्ग से ही काम लेना पड़ता है। शूण तथागत के पैरों में पड़ गया।
0: संतुलन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। वाचक स्वर डॉक्टर अरविंद सोनी का था और आलेख वसंत निरूण का। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हुआ है श्री रामचरित मानस के संगीतमय प्रसारण का। कलाकार है सुरेश पाटिल।

पक्षराज गरुड़ को श्री राम की महिमा सुनाते हुए काक भुशुंडी वो प्रसंग छेड़ देते हैं जब स्वयं उनके अपने मन में संशय उत्पन्न हुआ था। प्रभु की ये बाण अर्थात अभिलक्षण है कि वे अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं पनपने देते और यदि ऐसा होता देखते हैं तो वैसा ही उपचार करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु की पीड़ा की परवाह न करते हुए उसका घाव चिरवा देती है। काक भुशुंडी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं तब तब वे अवधपुरी जाते हैं। वहां श्री राम जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्षों तक वहां निवास करके श्री राम की बाल लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। कलाकार थे सुरेश वाडकर। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम कृषि सामायिकी का, जिसमें श्री पुष्पेंद्र सिंह आपको जानकारी दे रहे हैं। विषय है टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है यहाँ। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इन सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है, टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किनकी कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में, कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं, तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास की अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम, बेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की, जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीजें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना आपके फल ज्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या स्प्रे भी किया जा सकता है इनका। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
0: टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री पुष्पेंद्र सिंह, और कार्यक्रम था कृषि सामायिकी। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हुआ है हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी का।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय एकता विषय पर आधारित लघु वार्ता हिंदोसता हमारा। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी लेकर हम हाजिर होंगे 7:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 7:20 पर और 10:30 पर। साथ ही आपकी पसंद के फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम में 8:30 पर और 9:20 पर। बच्चों का कार्यक्रम बाल सवाल लेकर हम हाजिर होंगे 9:00। सुगम संगीत का वक्त रहेगा 10:05 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण करेंगे 10:00 आकाशवाणी भोपाल से। श्रोताओं 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम प्रसारित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात, तो सुनना ना भूलें 11:00। पहले ये प्रसारण हिंदी में किया जाएगा और उसके बाद संस्कृत भाषा में। महिला कार्यक्रम ये भी शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है, दिन में 1:00 आप सुन सकते हैं और 5:00 आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम युववाणी। महिला कार्यक्रम और युववाणी दोनों ही हमारे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है। 7:21 का समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का, जिसमें चर्चा के विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, टपक सिंचाई क्यों और कैसे, कम लागत में अधिक आमदनी हेतु बांस का करें उत्पादन। साथ ही आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, जोड़ों का दर्द कारण लक्षण एवं उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर पंकज शर्मा और भेंट करता है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। साथ ही आपको देंगे मौसम की जानकारी और सुनवाएंगे लोक गीत। श्रोताओं आपको एक बार फिर याद दिला दें कि दिन में 11:00 हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का प्रसारण। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:00 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34 शततमं संस्करणं भविष्यति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन

0: तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FMN 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता विषय पर लघुवार्ता हिंदोस्तान।

सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है। एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। एकता में महान शक्ति है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न

आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। एकता का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी विषय पर मतभेद ही ना हो। मतभेद होने के बावजूद भी जो सुखद और सबके हित में है उसे एक रूप में सभी स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी देश का आधार उसकी एकता एवं अखंडता में ही निहित होता है। देश का विकास, शांति, समृद्धि एवं अखंडता एकता के कारण ही संभव है। कौमी लड़ाई देश की नींव को खोखला करती है और इससे न निजी फायदा होता है और न ही राष्ट्रीय हित। आज भी हम समय समय पर कहीं न कहीं जातिवाद और स्वार्थवश देश की एकता को कमजोर होते देखते हैं। श्रोताओं, ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या न्याय प्रणाली की, यह चीजें तभी ही सुचारू हो सकती हैं जब आवाम में एकता हो। राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत हों, सभी नागरिक पहले भारतीय हों। भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल है। यहाँ सभी धर्मों और संप्रदायों को बराबर का दर्जा दिया है। अनेकता के बावजूद उनमें एकता है। हमारे मूल गहराई से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने बल दिया है। हमारे इन मूल्यों को सभी धर्म में स्थान मिला है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हों, अन्य धर्मों का आदर करना चाहते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार एक ही है। इसीलिए हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। आज एक बड़ा प्रश्न ये है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर समाज को बंटने से कैसे रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखना होगा। और ये सही है कि लोग अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दें, इससे सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन ये राष्ट्रीयता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग जानते हैं कि उनकी संस्कृति एक है। युवाओं को आगे आना चाहिए और आज देश के युवाओं को सबसे ज्यादा ये सोचने की जरूरत है कि एकता देश के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि यदि हम एक हैं तो बाहरी शक्ति को आंख उठाकर भी हमें नहीं देख सकती। राष्ट्रीय एकता ही देश की आत्मा है। सभी लोगों को मिलकर तन मन से देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ. यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवी जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण

तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश। तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई। और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FMN 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:21 हुए हैं, श्रोताओं वक्त हुआ है फिल्म संग।

फिल्म संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी अलकाना हटा। श्रोताओं, मई जून का महीना यानी कि छुट्टियों का भरपूर मजा, जिसमें

अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ घूमने जाते हैं। साथ ही जब वहाँ परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो सबके साथ मिलना मस्ती करने की तो बात ही अलग है। तो हमने सोचा आज बचपन की उन्हीं मस्तियों पर आपको कुछ प्यारे से गीत सुनवाकर आपकी यादें भी ताज़ा कर देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

श्री 420 फिल्म के लिए भी आपने लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को सुना। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं सही बताइएगा, इस गीत को सुनकर आपको भी याद आया होगा कि जब भी हम बचपन में सब छुट्टियों में मिलते थे तो समय व्यतीत करने के लिए बारी बारी से सारे खेल खेला करते थे और उसमें से एक था एक दूसरे से पहेलियां पूछना और उसमें वाकई कितना मजा आता था। और फिर छत पर सबका इकट्ठे होकर पतंग उड़ाना, गर्मी की छुट्टियां हो और पतंग ना उड़ाए ये तो नामुमकिन है। और फिर एक दूसरे की पतंग काट कर वो शोर मचाना, वाकई

भाभी फिल्म के लिए भी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था चित्र गुप्त का। श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ बच्चों के छुट्टियों के मस्ती भरे गीत। श्रोताओं, वाकई छुट्टियों की तो बात ही अलग है, और वो भी जब जब सारा परिवार इकट्ठा होता है और खूब सारे बच्चे, और जब कभी लाइट के चले जाने पर वो सबका छत पर सोना और गाने गाना, उनकी पैरोडी बनाकर गाना, अंताक्षरी खेलना तो हम सबका पसंदीदा खेल था। तो आइए ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं।

एक फूल दो माली इस फिल्म के लिए भी आपने आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को सुना। गीत लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत था रवि का। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं छुट्टियों की। वाकई श्रोताओं, बचपन की छुट्टियों की बात ही निराली है। पहले 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां भी कम पड़ती थी। अगर हम आज के बच्चों की बात करें तो शायद छुट्टियों का असली मजा तो उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो छुट्टियों में भी इतने बिजी रहते हैं और अगर उनको वक्त भी मिलता है तो मोबाइल गेम्स वगैरह में वो इतने बिजी रहते हैं कि वो छुट्टियों का जो हमने मजा लिया वहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं सकते। सारे दिन खेलना, दवा चौकड़ी करना और फिर बोर हो जाने पर घूमना और पिकनिक पर खूब मस्ती करना और खाना पीना और साथ ही मस्ती से झूमते गाते गाने सुनना, वो बात ही कुछ और थी। तो चलिए सुनवा रहे हैं आपको ऐसा ही एक मस्ती भरा गीत। फिल्म है हम है राही प्यार के, आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम। नमस्कार शिव।

0: नमस्कार शिवपुरी,
1: सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी अलका नाहटा। श्रोता, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आह्वान पर प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू एवं उससे बने उत्पादों जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, हुक्का और ई सिगरेट के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस समाज को यह संदेश देता है कि तंबाकू का सेवन केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं खराब करता बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। तंबाकू सेवन आज विश्व भर में गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। चिकित्सकों के अनुसार तंबाकू में मौजूद निकोटीन अत्यधिक नशे की लत पैदा करता है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे विभिन्न घातक बीमारियों का शिकार हो जाता है। मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ब्रेन स्ट्रोक तथा श्वसन संबंधी बीमारियां तंबाकू सेवन से जुड़ी प्रमुख समस्याएं हैं। भारत में हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु तंबाकू जनित रोगों के कारण होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं में बढ़ती तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। आकर्षक पैकेजिंग, साथियों का दबाव और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण कई युवा कम उम्र में ही गुटखा, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक बार ये लत लग जाने पर इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। कम उम्र में शुरू हुई ये आदत बाद में स्वास्थ्य के साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डालती है। गरीब और मध्यम वर्ग के कई परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा तंबाकू और उससे जुड़ी बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। धूम्रपान से निकलने वाला धुआं पैसिव स्मोकिंग का कारण बनता है जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारी और फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता रैली, संगोष्ठी, शपथ कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई जा रही है। सामाजिक संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे तंबाकू सेवन छोड़ने का संकल्प लें और अपने परिवार व समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग और सही परामर्श से तंबाकू जैसे लत को छोड़ा जा सकता है। इसीलिए परिवार, विद्यालय और समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में समय रहते जानकारी दें। इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू छोड़ने का निर्णय किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। इसके सकारात्मक परिणाम शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। तंबाकू छोड़ने से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा कम होता है तथा व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये एक दिवस ही नहीं बल्कि स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण का अभियान है। आइए इस अवसर पर हम सभी तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लें। एक स्वस्थ भारत और सशक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। श्रोता, आपको बता दें कि आज है अहल्या बाई होलकर की जयंती। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी त्याग, सेवा और न्याय को अपना मूल मंत्र बनाया। ऐसी ही एक महान शासिका थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। वो केवल मालवा राज्य की कुशल प्रशासक ही नहीं थी, बल्कि धर्म, संस्कृति, लोक कल्याण और नारी सशक्तिकरण की अद्वितीय मिसाल भी थी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रेरक उदाहरण है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। उस समय बालिकाओं की शिक्षा दुर्लभ थी, लेकिन अहिल्याबाई को पढ़ना लिखना सिखाया गया, जो आगे चलकर उनके प्रशासन में सहायक सिद्ध हुआ। 1767 में उन्होंने मालवा की बागडोर संभाली। उनका शासन सुशासन माना जाता था। उनका नाम भारतीय इतिहास में धर्म रक्षा और तीर्थ पुनर्निर्माण, मंदिरों, घाटों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार के रूप में जाना जाता है। वे केवल किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि सभी धर्मों और मतों का सम्मान करती थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए। वे नारी शिक्षा और आत्मसम्मान की समर्थक थी। वे सादगीपूर्ण जीवन जीती थी, साधारण वस्त्र पहनती थी। 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका यश आज भी अमर है। इतिहासकारों ने उन्हें दार्शनिक रानी, लोकमाता और आदर्श शासक कहा। श्रोताओं, अब चलते हैं कुछ खबरों की तरफ जो हम समाचार पत्रों से ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौतपे यानी कि मौसम की। नौतपा ने इस बार शिवपुरी जिले को झुलसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लगातार 5 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और तपती हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया।

तापमान आसमान छू रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शुक्रवार शाम मौसम ने पलटी ली। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही तेज आंधी, बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि ने गर्मी की तपिश को धूल चटा दी। हालांकि इस बदले मौसम ने राहत के साथ तबाही भी छोड़ी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। नौतपा के बीच आए इस बदलाव ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं तेज आंधी और बारिश ने ये भी याद दिला दिया कि प्रकृति जब करवट लेती है तो उसकी ताकत के सामने सारी तैयारियां छूटी पड़ जाती हैं। फिलहाल जिले के लोग राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई की चिंता भी उनके सामने खड़ी है, क्योंकि जिले भर में बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। कई स्थानों पर पेड़ बिजली लाइनों पर गिर रहे हैं, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है। शिवपुरी शहर सहित कोलारस, वदरवास, पिछोर, करेरा और बैराट क्षेत्र में देर रात तक बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आज कहां कहां बिजली गुल रहने वाली है। आवश्यक रखरखाव का कार्य किए जाने हेतु 33 केवी डाक बंगला उपकेंद्र के 11 केवी हॉस्पिटल फीडर, न्यू ब्लॉक फीडर, खुड़ा फीडर, जल मंदिर फीडर, कमलागंज, विवेकानंद कोर्ट फीडर पर आज विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। उक्त फीडरों के बंद रहने से सुबह 7 से 11 तक शक्तिपुरम खुड़ा, नई पुलिस लाइन, गौतम, न्यू शिव कॉलोनी, पीएस होटल के पीछे का क्षेत्र, बिहार कॉलोनी, कीचड़ी धाम कॉलोनी, नक्षत्र गार्डन के आसपास का क्षेत्र, नवाब साहब रोड, लक्ष्मीबाई रोड, कोर्ट रोड, अस्पताल चौराहा, हमाल मोहल्ला, हरिजन थाना, कस्टम गेट, गांधी पार्क, न्यू ब्लॉक, आर्य समाज रोड, टेकरी, बाबू क्वार्टर रोड, सुभाष कॉलोनी, ग्वालियर बाईपास, नमो नगर, बैंक कॉलोनी, कमलागंज, शास्त्री कॉलोनी, जल मंदिर, मीट मार्केट, कलेक्टर आवासीय बंगला, कलेक्ट्रेट रोड, तहसील के आसपास का क्षेत्र तथा विवेकानंद कॉलोनी, पुराना टोल टैक्स, डीजे साहब की कोठी एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहे।

श्रोताओं, प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों और हजारों शिक्षकों के लिए भी एक राहत भरी खबर आई है कि नौतपा की भीषण गर्मी के बीच आयोजित होने वाले पांचवी और आठवीं की दूसरी परीक्षाओं को राज्य शिक्षा केंद्र ने आगे बढ़ा दिया है। अब ये परीक्षाएं जून के मध्य में आयोजित होंगी, जबकि परिणाम भी जून माह में ही घोषित कर दिए जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पांचवी की दूसरी परीक्षा 16 से 22 जून तथा आठवीं की परीक्षा 16 से 23 जून तक आयोजित की जाएगी। श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना विकसित की गई है, जिससे कई खिलाड़ी रोजाना सम्मिलित होकर खेल मैदान में आते हैं और अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। खेल विभाग के माध्यम से साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिवपुरी पेडलर क्लब का संचालन किया जा रहा है। अब विभाग द्वारा प्रदेश का पहला

शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा शिक्षकों के लिए 1 से 31 मई तक का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन शनिवार को डीपीआई द्वारा शिक्षकों के लिए अवकाश 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। प्रभावी जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस बीच होने वाली बोर्ड व अन्य परीक्षाएं यथावत आयोजित की जाएंगी। श्रोताओं, आपको बता दें कि शिवपुरी में गहराते जल संकट के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवेदनशीलता को दिखाते हुए बिना किसी देरी के अधिकारियों को आमजन के लिए पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सिंधिया की सक्रियता के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा भी स्वयं मोर्चे पर उतर आए हैं और पूरे प्रशासनिक अमले की कमान संभाल ली है। वार्डवार अधिकारियों की तैनाती से लेकर पेयजल आपूर्ति की लगातार निगरानी तक प्रशासन अब हर बूंद को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। तपती गर्मी में प्यास से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन की यह तत्परता उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना पारक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार

0: वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास

0: के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फर्क।

आपकी फरमाइश सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद की, और आप हैं नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका रुपो, ऋषिका और रॉबिन। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

जूली फिल्म के लिए भी आपने किशोर कुमार को सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था राजेश रोशन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी शिवपुरी से और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश हमें किसने लिख भेजी है। आप हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जुदाई फिल्म के लिए भी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, गीत हम आपको और भी सुनवाने वाले हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक अंतराल का।
1: ये कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश।

उमराव जान फिल्म के लिए भी अपने आशा भोसले को सुना। गीत लिखा था शहरयार ने और संगीत था खयाम का, और इस गीत को सुनना चाहा था पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद की फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और चावेंद्र कुमार वर्मा की फरमाइश हम आपको सुनवाने वाले हैं। और इन्होंने सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है एसटी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, प्रेम साहू और यमुना साहू की। और आपने सुनना चाहा है रोटी फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने साथियों का कार्यक्रम बाल सभा।

बच्चों जय हिंद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे। चलिए तो आज हम बहुत सारी जानकारी और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व धूम्रपान निषेध दिवस की, जो कि आज है, यानी कि 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। आपको पता है आज की दुनिया में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना, उनमें से एक धूम्रपान है। धूम्रपान का मतलब बीड़ी, सिगरेट, सिगार या अन्य कोई भी वस्तु तंबाकू या ऐसे पदार्थों से बनी हो जिसको जलाकर उसके धुएं को निकाला जाता है। ये धुआं फेफड़ों में जाता है और नाक और मुंह से सफेद धुआं बनकर निकलता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। अब धूम्रपान लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से लोग तनाव या कई लोग शौक में अपने को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में इन आदतों को अपनाते हैं। लेकिन जब कोई धूम्रपान करता है तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पता है बच्चों, इससे फेफड़े में सांस की बीमारी और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। कैंसर के करीब 1/3 मामले धूम्रपान के कारण ही होते हैं।

और फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, जबकि उनको पता है कि हम इससे बीमार हो जाएंगे। या तो वो इंतजार करते हैं कि जब तक हम बीमार ना हो जाएं, तब तक हम नशे की चीजें लेते रहें, और साथ ही वे अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालते हैं। तंबाकू का धुआं आपकी स्किन को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। सिगरेट और बीड़ी पीने से फेफड़ों में जलन होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी करता है। वास्तव में देखा जाए तो धूम्रपान कैसे भी किया जाए, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और इसी की जानकारी देने के लिए हर साल 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप धूम्रपान ना करें, इससे बचें, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बच्चों, आपके भी चारों तरफ ऐसे लोग हों जो धूम्रपान करते हों, तो आप भी ध्यान रखिए कि हमेशा हमें तो इन चीज़ों से बचना ही है, साथ ही दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है कि वो ऐसी गलत आदतें ना डालें, क्योंकि वो उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर तो बुरा असर डालती ही है, और साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी बहुत बुरा असर डालती है। वो खुद तो बीमार होते ही हैं, साथ ही उनके साथ में रहने वाले लोग भी, जो कि वो धुएं से परेशान होकर उससे भी बीमार होते हैं। तो ध्यान रखें, स्वस्थ जीवन जिए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का दिन। यूं तो देखा जाए माता पिता का तो रोज ही दिन होता है ना, लेकिन हर साल 1 जून को, 1 जून यानी कि कल, हर साल 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि विश्व अभिभावक दिवस मनाया जाता है। सन 2012 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। बच्चों, यूं तो हर दिन मम्मी पापा का होता है, वो हमारे लिए सबसे खास होते हैं, वो बच्चों के जीवन का पहला और जरूरी हिस्सा होते हैं। जब माँ बाप हमारे पास नहीं होते हैं, हमारे आसपास हमारे माता पिता नहीं होते, तो हमको कितना बुरा लगता है ना, उनकी याद आती है, क्योंकि वो हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमें प्यार भी करते हैं और हमारी सारी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। माता पिता प्रेम, समर्पण, करुणा और त्याग का प्रतीक होते हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती है ना उनके लिए। सबसे पहली बात तो बच्चों को अपने पिता और माता को हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपने मम्मी पापा को सम्मान देना कभी ना भूलें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से ही तो हम बड़े होते हैं, और हम बड़े भी होते हैं और आगे जाके कामयाब भी बनते हैं और सम्मान से जीते हैं। यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। तो हमेशा हमें अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चों, बच्चे के जन्म के बाद माता पिता उनकी हर जरूरत और इच्छा को कहे बिना जानकर उसे पूरा करते हैं। छोटे बच्चों के रोने से ही माँ समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या कोई तकलीफ है। वहीं माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं और थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो बच्चों पर निर्भर रहने लगते हैं। ऐसे समय माता पिता का सहयोग करना, उनका ख्याल रखना, उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता अपनी तकलीफ भूलकर उनका ख्याल रखते हैं, तो हमको भी उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास बैठकर उनका मन लगा सकते हैं। हमें हमेशा थोड़ा समय निकालकर उनके पास जरूर बैठना चाहिए, उनसे

शेयर करना चाहिए, और हो सकता है उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हों जो वो आपसे कहना चाहें, अपने मन की इच्छा बताना चाहें आपको, तो हमें उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपकी पसंद का खाना बनाने से लेकर खिलौने, अच्छे स्कूल में पढ़ाने तक हर ज़रूरत माता पिता पूरी करते हैं। जब माता पिता को हमारी ज़रूरत का हमारा हमेशा ध्यान रहता है, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे होते हुए उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, उन्हें किसी तरह की कमी ना हो। हम अपने माता पिता का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते। आप कितनी भी कोशिश करें कि हम अपने माता पिता का कर्ज उतार दें उनकी सेवा करके या किसी भी तरह से, तो बच्चों वो तो नामुमकिन है। हमें उन्होंने इस दुनिया में आने का अवसर दिया, हमेशा हमें प्यार किया, हमें हर खुशी दी, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। हमें कभी भी कोई ज़रूरत हुई या हमें कहीं भी कोई तकलीफ़ हुई, कुछ परेशानी हुई, तो हमेशा हम उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और उनके सही रास्ते पर चलकर ही हम एक अच्छे इंसान भी बन पाते हैं। और अपना आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया, बच्चों उनके आशीर्वाद से ही हम एक कामयाब और अच्छे इंसान बनकर सम्मान की ज़िंदगी बिता सकते हैं। माता पिता का प्यार हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे जीने के लिए सांसें। हमें हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, और रोज़ उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब आप उनको सम्मान दोगे तो यकीनन आप भी सम्मान से जियोगे।

तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें। चलो आगे आपको बताते हैं कि कल एक दिन और वर्ल्ड मिल्क डे है। मिल्क ज्यादातर बच्चों को तो पसंद होता है, लेकिन कुछ बच्चे जिद भी करते हैं नहीं पीने में, है ना? तो हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि मिल्क यानी कि दूध कितना जरूरी है हमारे खान पान में। और इसी के लिए बताने के लिए हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये दिन दूध और दूध से बनी खाद्य पदार्थों के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करता है। और बच्चों के लिए तो दूध बहुत जरूरी है, बच्चों को जरूर दूध पीना चाहिए क्योंकि उनको स्ट्रांग बनना होता है। बच्चों सुबह से लेकर रात तक हम अपने खान पान में दूध का इस्तेमाल करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर दूध एक बैलेंस डाइट के रूप में होता है। हमें दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी ज्यादातर पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। जैसे दूध में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। दूध में पोटेशियम और कैल्शियम होता है जो हमारे हार्ट मसल्स और नर्वस सिस्टम को सही रखता है। वहीं दूध में विटामिन B12, आयोडीन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बढ़ने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आपको तो मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है, इसीलिए दूध जरूर पीना चाहिए बच्चों को। अब आप घर पर मम्मी से दूध नहीं पीने के लिए जिद नहीं करोगे, रोज़ दूध पियोगे, है ना बच्चों? दूध में विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन हमारी स्किन को अच्छा रखता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। यानी कि दूध हमारे खान पान का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने से लेकर दैनिक पोषण को बनाए रखने तक सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ध्यान रखना, हमें दूध ज़रूर पीना चाहिए और कम से कम दिन में बच्चों को 2 बार तो दूध ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है? चलो अब आप से हम बात करते हैं गर्मियों की छुट्टियों की। आप सबकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और थोड़े दिन बाद खत्म भी होने वाली है। तो बच्चों देखो, गर्मियों की छुट्टी का मतलब ढेर सारी मौज मस्ती तो है ही, लेकिन हमें उसका कुछ इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि ये छुट्टियां हमारे लिए वेस्ट ना हो। हमें छुट्टियों में बहुत सारा टाइम मिलता है, होमवर्क तो हम फटाफट कर लेते हैं, फिर उस पर बहुत सारा हमें

बचता है उसका हमें क्या करें। उसके लिए हमें देखो फ्री टाइम वैसे तो हमें मिलता नहीं है, सिर्फ छुट्टियों में ही मिलता है। तो हमें कुछ चीज़ सीखनी है तो हम छुट्टियों में सीख सकते हैं। आपकी कोई भी हॉबी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्विमिंग, स्केटिंग, जो चीज़ आप अपने स्कूल डेज में नहीं सीख सकते ना, वो चीज़ आप, वो काम आप छुट्टियों में सीख सकते हैं। कभी कोई स्पोर्ट्स क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपका टाइम पास भी होगा, नए नए दोस्त भी बनेंगे। साथ ही कई बार ऐसा होता है हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम छुट्टियों में उस राइटिंग करके अपनी राइटिंग भी सुधार सकते हैं। हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो हम उसकी कोचिंग ले सकते हैं। यानी कि छुट्टियों का अगर हम इस्तेमाल करें ना, तो बहुत सारा इस्तेमाल छुट्टियों का हम कर सकते हैं और इस्तेमाल के साथ साथ हम फ़ायदा उठा सकते हैं उनका सीखने में। कोई हमें लैंग्वेज नहीं सीखनी है, कोई भाषा सीखनी है तो हम उसका सीख सकते हैं। और आजकल तो इतनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कि आपको गर्मी में कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठे आप सीखो। तो डबल फ़ायदा, एक तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे आप सब चीज़ें सीख सकते हो जो भी आप सीखना चाहो, और आपका समय का इस्तेमाल भी हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे आपको। तो देखो कितने सारे फायदे हैं ना गर्मियों की छुट्टियों के लिए, घूमना फिरना मौज मस्ती के साथ साथ खूब सारा सीखना नई नई चीज़ों को और नए नए दोस्त बनाना। तो बच्चों अगर आपने अभी तक अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो आज से ही शुरू करो सोचना कि हम इन छुट्टियों में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा भी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो मुझे भी दीजिए अनुमति और सोचिए कि हम इन छुट्टियों को कैसे अच्छे से बिता सकते हैं। और मुझे दीजिए अनुमति, जय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने साथी सुन रहे थे उनका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हुआ है आपकी पसंद के फिल्मी गीत सुनवाने का। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके पसंद के इस गीत के साथ।

0: मिलन फिल्म के लिए आपने मुकेश को सुना, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के गीत हम आपको और भी सुनवाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक अंतराल का।
1: नो कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का अगला गीत।

जो जीता वो सिकंदर। इस फिल्म के लिए भी आपने उदित नारायण और साधना सरगम को सुना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहा था छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी अगली फरमाइश।

धर्मवीर फिल्म के लिए भी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा था लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपरी केंद्र से। आइए सुनते हैं आपके पसंद का।

वास्तव फिल्म के लिए भी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहा था सिद्ध विहार कॉलोनी शिवपुरी से अनिल, सुनील, अजय, संजय, नीलम, अलका, हेमलता, स्वाति, शेफाली, शुभम, कृतिका, अर्जू, हार्दिक, सौम्या, ईशान और गौरव ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद की फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का अगला गीत।

एक दूसरे के लिए। इस फिल्म के लिए भी आपने लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम को सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा था चांडूर विस्वा तालुका नांदोरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके पसंद के फिल्मी गीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत।

0: लम्हे फिल्म के लिए भी आपने लता मंगेशकर, हरिहरन और साथियों को सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था शिव हरि का। और इस गीत को सुनना चाहा था ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।

0: नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष

अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में एक माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: FMN 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की गाई कुछ गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत है इस गजल के साथ।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी से केंद्र से, और सुनवा रहे हैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल की गाई कुछ गजलें।

0: राम प्रसाद बिस्मिल की गाई इस गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हुआ है फिल्म संगीत का, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

अभी आप सुन रहे थे रवींद्र रावल का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने और आवाज़ें दी थी लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों ने, और फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र।

सनम तेरी कसम। इस फिल्म के लिए भी आपने आशा भोसले को सुना। गीत गुलशन बावरा का था और संगीत आरडी वर्मन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।

बॉबी फिल्म के लिए भी आपने शैलेंद्र सिंह को सुना, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत ही संपन्न

FM 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक

0: ये तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले ले आ गया ना किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
10: नमस्कार सर। नमस्कार।
11: नमस्कार सर।
9: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
10: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
9: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार हो,

0: जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था, अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे, भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था, अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा, अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे। तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे, भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा

0: था एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम

सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है,
वहां एक गंगा डॉल्फिन

0: डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति 100 मीटर मितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात 100 मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये 100 मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतद् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौ स्त

12:11 और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका रहता है आपको पूरे सप्ताह इंतजार, यानी कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो एक सामाजिक ताने बाने से बुनी एक फिल्म है। प्रेम प्रसंग भी है लेकिन एक सामाजिक संदेश भी है। फिल्म है 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग। निर्माण और निर्देशन किया इसका राज कपूर साहब ने, कहानी लिखी जैनेन्द्र जैन और कामना चंद्रा ने, मुख्य भूमिकाओं में रहे ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरे, शमी कपूर, नंदा, तनुजा, ओम प्रकाश, और छायांकन यानी फोटोग्राफी का पक्षभार संभाला राधु कर्माकार ने, और एडिटर थे इस फिल्म के खुद राज कपूर। संगीत दिया यादगार संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस फिल्म में 3 गीतकारों ने 6 गीत कुल लिखे। गीत संतोष आनंद ने लिखे 4 गीत, आमिर कजलबख्श ने लिखा 1 गीत और 1 गीत लिखा पंडित नरेंद्र शर्मा ने। ऋषि कपूर ने भूमिका निभाई देवधर की, यानी देव, जो एक गरीब और शिक्षित अनाथ है और जिसका पालन पोषण किया है उसके मामा ने। पद्मनी कोल्हापुरे ने मनोरमा का किरदार निभाया, यानी रमा, जिसको सब प्यार से कहते हैं, जमींदार घर की इकलौती बेटी है। और शमी कपूर थे राजा ठाकुर, बड़े राजा ठाकुर के किरदार में, और छोटी माँ यानी रमा की माँ थी नंदा। राजा वीरेंद्र प्रसाद सिंह थे राजरानी के किरदार में, पत्नी जो उनकी राजरानी थी वो थी तनुजा के किरदार में, और राजा वीरेंद्र सिंह प्रताप सिंह थे रजा मुराद। सुषमा सेठ जो थी वो थी बड़ी माँ के किरदार में, यानी बड़े राजा ठाकुर की अर्धांगनी। रमा के पिता थे वीरेंद्र सिंह छोटे ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा का ने ये किरदार निभाया। इसके अलावा रजा मुराद ओम प्रकाश पंडित के किरदार में थे पुजारी के रूप में, जो देव के मामा होते हैं। दुलारी देव के मामा की अर्धांगनी यानी देव की मामी। इसके अलावा विजेंद्र घाटके होते हैं रमा के पति कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह के किरदार में। इसके अलावा बिंदु हैं चमिया के रोल में। किरण वैराले हैं राधा के रूप में, जो कि इस देवधर की ममेरी बहन है। कहानी शुरू होती है गांव से, जहां पर यह दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे हैं देवधर, रमा और राधा, तीनों अपने बचपन में खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और अपना बचपन आनंद से बिता रहे हैं। देवधर और राधा हैं गरीब परिवार की और रमा है सबकी चहेती ठाकुर परिवार की इकलौती बहन, एक ही लड़की और सभी की आंख का तारा है। फिल्म की शुरुआत होती है नंबरिंग में, ये तीनों बच्चे दिखाए जाते हैं, और उसके बाद प्रेजेंट में ये फिल्म आती है और दिखाया जाता है कि अब ये सब बड़े हो गए हैं। दिखाया जाता है कि रमा सबकी लाडली है, जमींदार परिवार की इकलौती लड़की है, और सभी उसको पलकों पर बिठाते हैं, उसके नाज नखरों को सहते हैं, और वो भी मानो इस दुनिया में ये चाहती है कि सब कुछ उसे मिल जाए। उसकी बचपन की सहेली है राधा, जिसके साथ उसका समय बीतता है। राधा से पता चलता है कि देवधर अपनी पढ़ाई करके छुट्टियों में गांव आ रहा है। देवधर पहले तो पहचानती नहीं, सोचती है कौन देवधर, फिर एकाएक याद आता है कि हाँ, ये वही देव है जो बचपन में उनको पढ़ाया भी करता था और उनके साथ खेला भी करता था। लिहाजा दोनों सहेलियां देवधर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाती हैं। वहां देवधर की जगह किसी और शख्स को राधा के सामने रमा देव समझ लेती है, और इस शैतानी में देव और राधा चुप रहते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं ये, क्या मजा आता है इस शैतानी में। जब पोल खुलती है तो रमा को चढ़ता है गुस्सा और वो बग्गी से उतार देती है देव और राधा को, लेकिन वो जानते हैं कि रमा का ये गुस्सा पल भर का है। हवेली जाते हैं, दोनों की मुलाकातें होती हैं। देव बचपन की मनोरमा को इस रूप में देखकर मन ही मन चाहने लग गया है,
लेकिन बेखबर है कि रमा के मन में उसके लिए चाहत का बीज उगा है या नहीं। लेकिन वो तो बस अब हर वक्त रमा के ही सपने देखता है।

देव यही चाहता है कि उसके दिल की ये सदा, उसके दिल की ये पुकार मनोरमा तक पहुंचे और उसकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही पैगाम आए कि वो भी उसे चाहती है। लेकिन मनोरमा देव की इन फीलिंग से, इन भावनाओं से अनजान है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन देव को पता चलता है कि मनोरमा की शादी तय हो गई है। और मनोरमा की शादी कुंवर नरेंद्र प्रताप से हुई है, जिन्हें मनोरमा भी पसंद करती है। एक नामी गिरामी जमींदार परिवार के कुंवर हैं। अब देव अपना समूह लेकर रह जाता है। हवेली में आना जाना उसका हो चुका है और बड़े राजा ठाकुर भी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि देव पढ़ लिख कर आया है और उसके विचार जो हैं वो एक नए जमाने के हैं। दरअसल होता यह है कि गांव में एक विधवा लड़की होती है और उसका प्यार हो जाता है गांव के गरीब आदमी से। लड़की के पिता को ही नागवार गुजरता है, वो उसको मारने के लिए हाथ उठाते हैं। इसी बीच बड़े राजा ठाकुर वहां पहुंचते हैं, क्योंकि गांव के जितने भी झगड़े फसाद होते हैं उनका फैसला बड़े राजा ठाकुर के न्याय से ही होता है। और वो कहते हैं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सारी बात सुनने के बाद बड़े राजा ठाकुर कहते हैं कि क्यों ना इस बच्ची का विवाह, दूसरा विवाह इस युवक के साथ कर दिया जाए। देव उनका न्याय सुनकर खुश भी होता है, हैरान भी होता है और उनकी इज्जत और भी करने लगता है। और इधर देव भी यही चाहता है। ये देखकर राजा ठाकुर भी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब देव को यह पता चलता है कि अब मनोरमा जिसको वो चाहता है वो पराई होने जा रही है, तो वो एक दूरी सी बना लेता है, लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए हवेली अक्सर जाता है, क्योंकि इसी हवेली का आसरा पाकर ही तो वो आज इस काबिल बना है पढ़ लिख कर। अगर बड़े राजा ठाकुर ना होते, बचपन में उस अनाथ के सर पर अपना हाथ ना रखते, उसे पढ़ने के लिए शहर ना भेजते, तो आज शायद देव भी कहीं गलियों में भीख मांग रहा होता। लिहाजा अपना फर्ज निभाकर वो रमा की शादी में सारे काम संभालने के लिए पहुंच जाता है। और उधर रमा, उसका तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब उसकी शादी होने जा रही है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: 12:58 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आज की फिल्म है कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी मैं 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग। और दोस्तों अब कहानी आगे बढ़ती है, रमा कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह की दुल्हन बनकर चली जाती है और दिल पर पत्थर रख लेता है देव, अपनी मोहब्बत को जाता हुआ देखता है। हालांकि देव की बहन राधा और मामी दोनों जानते हैं देव की भावनाओं के बारे में लेकिन बोलते नहीं हैं। अब रमा पराई हो चुकी है और देव उसे भूल नहीं पा रहा है।
1: मुझे आपसे बात करनी है।
2: क्या?
1: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
2: अरे पहले बात तो कहो।
1: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
2: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
1: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ पर उस घर में नहीं।
2: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
1: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
2: सारे घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, 4 लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
1: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार होना।
2: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
1: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
2: सारे तुम्हें क्या हो गया है?
1: देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
2: सारे बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
1: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
2: सारे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
2: सारे क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
1: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
2: सारे ये जिद गलत है, तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
1: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
2: सारे तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
1: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
2: तुम समझने की कोशिश करो।
1: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
2: सारे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
1: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
2: सारे क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
1: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती, तुम अपने अम्मी अब्बू को कहां कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
2: सारे ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे।

0: वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती। वो मुझसे प्यार करती थी।
1: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारा, सारे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
1: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके, और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे, सारे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं?
1: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके, और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
0: सारे, समझने की कोशिश करो।
1: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक, कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
0: सारे!

0: नहीं बोल तो सही।
1: हाय हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
2: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
2: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला मार डाला।
2: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
1: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
2: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ सारे को?
1: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
2: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
2: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
2: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसके गुलाम बन कर रहे।
2: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
2: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
1: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
2: सारे कहाँ है?
1: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
2: फाता तू अपने

0: ने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
1: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
0: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
1: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी? नहीं नहीं
2: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
0: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
1: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
0: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
1: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
0: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
2: हाँ हाँ चलो
0: चलो चलो चलते हैं।

0: फाता।
1: आ गए।
0: फाता, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थी?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर
1: है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरे बच्चे।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फाता, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है न कि।
1: चुप करो चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह,

0: आ रहे, मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे, तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का, इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है अम्मी।
0: सारे सारे, तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और सुन ले, मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटी।
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी, और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने, एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारे, वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ, और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है, और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया,
1: अम्मी
0: और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी, अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूँ मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी तू अब कुछ भी

0: करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
1: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
0: अम्मी,
1: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती, और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी, और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: अम्मी,

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की 5वीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी

0: 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश श्रोता बहनों के लिए

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्रपान निषेध दिवस पर। आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहनें भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यक

आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें हमेशा संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

बहनों, अब बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण, महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन नौतपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं, तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, ये बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन 7 बातों की तरफ यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें यानी 7 वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण बातें कही। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थी। सर्वप्रथम, 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, इसलिए हम लोगों को 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना।
दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं, आप वहाँ जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन सात बातों यानी इन सात वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन सात वचनों का पालन करें।

सखियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वादानुसार, गुलाब का शरबत 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें। सुबह तक यह फूल कर जेली जैसा हो जाएगा। अब 1 गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें। भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए

0: लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी बड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने ली है आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगो कर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता बहने अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी

प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने संगीता राय के गाए गीत और भजन सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य

0: नसंसनी नसंसनी नसंसनी ना उत्तेजना ना उत्तेजना ना उत्तेजना नशोर दिन रात नशोर दिन रात नशोर दिन रात ना ही अहंकार केवल मनोरंजन ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सल

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान

0: रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात

0: से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान

0: लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नन्हे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत

नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आपकी दोस्त विभूति। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी।

0: एक मजेदार पहेली, देंगे आपको एक छोटा सा मैसेज और मिलेंगे अपने दो खास मेहमान बच्चों से भी। अंत में सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कान, प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। बच्चों अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी।
1: बच्चों आज हम सुनाएंगे कहानी आलस बुरी बला है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आलसी बनने से रोकेगी। एक गांव में रहता था किशोर, एक बहुत

एक दिन उसके द्वार पर आए एक साधु, और साधु उससे बोले, बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, ये पत्थर लोहे को

मैं कल लोहा खरीद लूंगा, और सो गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसे उठाया तो वो थोड़ा सा लोहा लेकर आया जो सोना बन गया। वो उस सोने को बाजार में बेच आया, लेकिन बोला, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, और फिर से सो गया। ऐसे करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठवां, सातवां दिन

0: किशोर घबराते हुए बोला, महाराज अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा समय और। साधु ने गुस्से में कहा, तू आलस का गुलाम है, तेरे जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किशोर पछता कर रह गया। साधु पारस लेकर वापस चले गए। अब देर हो चुकी थी, आलस ने किशोर के सारे सपने चुरा लिए थे। तो बच्चों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
1: बच्चों, इस कहानी में कितनी प्यारी सी सीख है कि छोटे काम भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मजेदार पहेली कोने की तरफ, जहां पर आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली जिसका आंसर देना होगा आपको। पहेली ये है कि मैं बिना पांव के चल सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना हाथ के चीजें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? आंसर समझ में आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर सोचिए और मैं देती हूँ एक छोटी सी हिंट। हिंट ये है कि जब मैं तेज होता हूँ तो पेड़ हिलते हैं और जब मैं धीमा होता हूँ तो पत्तियाँ शांत रहती हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जवाब है हवा या हवा का झोंका। ये हवा बिना पाँव के चलती है, बिना मुंह के लगता है कि बोल रही है और पेड़ों को हिला देती है। अब सच बताइए, आपको उत्तर समझ में आया था या आपने सोचा था कुछ और? अब हम पढ़ते हैं हमारे संदेश की ओर। एक छोटी सी काइंडनेस। आप हर रोज कोशिश कीजिए कि किसी का काम थोड़ा सा आसान कर दें, किसी छोटे को अपने खेल में शामिल कर लें या घर में किसी बड़े की मदद कर दें। रास्ते में गिरे हुए केले के छिलके को उठा दें, जिससे सफाई भी होगी और वो किसी को फिसलने से गिरने से भी बचाएगा। ऐसी दया या काइंडनेस से आपका दिल बड़ा होता है और आपके होठों पर खिलती है मुस्कान। अब वक्त है हमारे मेहमानों से मिलने का। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलो इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बेटा।
2: हेलो।
1: आपका नाम क्या है?
2: स्वरा।
1: स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: फोर्थ।
1: तो अभी आपके समर वैकेशंस चल रहे होंगे?
2: यस।
1: छुट्टियों में के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
2: मुझे छुट्टियों के बारे में एक, मैं डांस क्लास जाती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और मैं उनके साथ खेल भी पाती हूँ। इस गली में कोई रहता ही नहीं है।
1: अच्छा, जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई नहीं रहता है ना? और जो फ्रेंड्स मिलते हैं डांस क्लासेस में, वो बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ डांस सीखते हो कि और भी मस्ती करते हो?
2: हम डांस भी सीखते हो। मैं, मम्मा ने कुछ क्लासेस की बात करी है, पर वो इतने सारे चार्जेस ले लें अवेकस के लिए, ड्राइंग के लिए, तो मम्मा ना अब हमें
1: एक क्लास ज्वाइन कराई है।
2: हाँ।

0: क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है ना, थोड़े कम चार्ज लेना चाहिए ना उनको, जिससे बच्चे ढेर सारा सीख सके।
1: हाँ।
0: तो अभी कितने गानों पे डांस सीखा है आपने?
1: अभी तो मैंने टोटल 5 सॉन्ग्स पे डांस सीखा है।
0: अच्छा, हमें करके दिखाना आप, जब हम बात कर ले उसके बाद मैं डांस दिखाओगे?
1: हाँ।
0: सिर्फ डांस पसंद है, गाना गाना भी पसंद है आपको?
1: थोड़ा थोड़ा पसंद है गाना गाना, वैसे तो डांस करना ही पसंद है।
0: ज्यादा डांस करना पसंद है। और सबसे अच्छा कौन डांस करता है आपकी क्लास में?
1: सबसे अच्छा दीदी करती हैं।
0: सिखाने वाली?
1: वो वाली जो आती है क्लास में
0: आपके साथ सीखती हैं वो? तो क्या नाम है उन दीदी का?
1: उन दीदी का नाम है राध्या।
0: राध्या। और सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी इस डांस क्लास में?
1: सबसे अच्छी फ्रेंड अद्विका है।
0: वो भी डांस सीखती है कि वो कुछ और भी सीखती है?
1: वो डांस भी करती है और आर्ट क्लास भी जाती है।
0: अच्छा, छुट्टियों में सिर्फ ये हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ पढ़ाई हो रही है घर पे?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कितनी?
1: थोड़ी सी। इसको पढ़ा देती हूँ मैं अपने भाई को।
0: अच्छा, तो बस उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है?
1: हाँ।
0: वेरी स्मार्ट। अच्छा, और भी कुछ घर पे कर रहे हो?
1: मैं घर पे स्केचिंग करती हूँ और ड्राइंग करती हूँ खुद से।
0: क्या बनाया आपने कल स्केच?
1: कल मैंने स्ट्रॉबेरी का स्केच बनाया।
0: स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी बहुत तो फायदेमंद है। आपको पसंद है खाने में स्ट्रॉबेरी?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कौन सा फ्रूट पसंद है खाने में?
1: मुझे बनाना।
0: बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बनाना शेक भी पीते हो या कैसे खाते हो?
1: सिंपल जैसे सब लोग खाते हैं,
0: उसको छिलका उतार के।
1: हाँ।
0: और केले का छिलका कहीं यहाँ वहाँ गिरा दिया है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये पता है आपको?
1: हाँ पता है।
0: किसी को गिराने की कोशिश तो नहीं करी?
1: नहीं।
0: तो छिलका कहाँ डालते हैं?
1: छिलका डस्टबिन में डालते हैं।
0: वेरी गुड। अच्छा, डांस क्लास का टाइम क्या? आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है, तो कितने बजे जाते हो?
1: मेरा 8 बजे का बैच है।
0: मॉर्निंग?
1: मॉर्निंग।
0: और कितनी देर तक सीखते हैं?
1: मैं 10 बजे तक।
0: 10 बजे तक सीखते हो। तो कौन से गाने पे डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है आपको, जरा गा के बताओ? मैं
1: घर मोरे परदेसिया।
0: थोड़ा गाना आता है? थोड़ा सा।
1: नहीं।
0: कोई पोयम आती है? मेरी फेवरेट पोयम हमें सुना दो जो बच्चे सुन रहे हैं।
1: कौन सी?
0: जो भी आपको पसंद हो। हिंदी की कोई कविता सुना दो।
1: हिंदी की क्या सुनाऊं?
0: हिंदी की कविता याद नहीं है?
1: नहीं है।
0: इंग्लिश की याद है?
1: इंग्लिश की मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही।
0: कोई गाना ही सुना दो फिर।
1: गाना साहिवा साहिवा नींदे मींदे आए ना राती काटी जाए वह तेरे ही ख्याल।
0: अच्छा, तो आप नहीं गाना नहीं गा पा रहे हो, कोई जोक कोई कहानी कोई शायरी कुछ याद आ रही है तो सुना दो
1: मुझे ना। रातों रात मिटा दूंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान।
0: ये आपने फिल्म में सुना है?
1: नहीं, यूट्यूब पे।
0: कोई बच्ची बोल रही थी आपके जैसी?
1: नहीं, बड़े लोग।
0: अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा?
1: ठीक ठीक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं।
0: ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो कुछ ऐसा सुनाओ जो अच्छा लगा।
1: यही अच्छा लगा।
0: अच्छा अच्छा, अब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
1: स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और जब मैं स्कूल जाऊंगी उस दिन गेम्स का पीरियड है तो मजा भी आएगा।
0: कौन सा गेम खेलती हो?
1: हम अभी के लिए तो बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते हैं, डोज बॉल।
0: अच्छा, घर में आप थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे मामा हैं या पेरेंट्स हैं आपके?
1: हाँ।
0: क्या काम करते हो?
1: मैं बोटल्स में पानी भर के रखती हूँ ठंडा होने के लिए, उनके कपड़े को घड़ी करके रखती हूँ और कभी कभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत।
0: सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी चीज़ है ना। और ये जो भैया है आपका, ये गंदगी करता है या सफाई करता है?
1: मेरे साथ कभी थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर लेता है और कभी गंदगी भी करता है।
0: फिर आप कान खींचते हो उसके?
1: कान कभी कभी।
0: इसी बातें करते हैं ना।
1: चलो,
0: क्या नाम है आपका?
2: अयांश।
0: और अभी सब फ्रेंड्स को हेलो बोलिए जो आपको सुन रहे हैं, बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: अयांश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: एलकेजी।
0: एलकेजी में पढ़ते हो। केजी में आपने कुछ सीखा है, पोयम सीखी है कोई?
2: हाँ।
0: सीखी है?
2: हाँ।
0: सुनाइए।
2: 1, 2, 3।
0: 1, 2, 3 सीखा है?
2: हाँ।
0: सुनाओ।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: 8 भी आता है बीच में?
3: अच्छा।
0: ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम आती है?
2: नहीं।
0: जॉनी जॉनी वाली
2: आती है?
0: सुनाइए।

0: फ्रेंड्स को भी अपने हेलो बोला ना, अब वो सोच रहे होंगे आयांश कुछ सुनाएगा हमें।
1: जानी जानी यस पापा शुक्र नए नए पापा
0: जॉनी जॉनी यस पापा आता है बस। हाँ
1: हाँ
0: चलो ठीक है, काफी है इतना। और आपको काउंटिंग भी आती है ना, 1 to 10?
1: हाँ
0: 10 के आगे नहीं आती। तो आयाश आपको छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: आती है काउंटिंग।
0: आती है?
1: हाँ
0: 10 के आगे आती है।
1: हाँ
0: सुनाओ।
1: 11
0: वेरी गुड
1: 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा आप पोयम भी याद आई क्या कोई सी? जॉनी जॉनी पूरी याद आई?
1: हाँ
0: सुनाओ।
1: अभी तो सुनाई,
0: अभी एक ही लाइन सुनाई थी। पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ, पूरी याद आई?
1: हाँ
0: सुनाओ सुनाओ।
1: जॉनी जॉनी यस पापा शोर रहे थे नए पापा।
0: अच्छा और अपने हाथों से ये आप हार्ट का शेप बना रहे हो?
1: नहीं।
0: अच्छा आप जो आपके फ्रेंड सुन रहे हैं उनसे कुछ और भी बात बोलनी है आपको?
1: नहीं
0: कुछ नहीं बोलना।
1: नहीं।
0: अच्छा छुट्टियों में क्या करते हो ये तो बताओ हमें।
1: छुट्टियों में रुक जाता हूँ घर पे।
0: घर पे रुक के क्या होता है?
1: नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। हाँ।
0: और आप स्पेशल कपड़े कब पहनते हो?
1: फैशन कपड़े बाजार के लिए होता है।
0: बाजार के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हो? तो वो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं?
1: ड्रेसिंग रूम में।
0: ड्रेसिंग रूम में। और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कहाँ होते हैं?
1: वो भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं।
0: अच्छा लेकिन आपने जो पहना है हमें तो ये काफी स्पेशल लग रहा है। ये भी ये किसने बनाया आपको?
1: ए, मामा ने। आपके पास में टिश्यू पेपर है ना?
0: टिश्यू पेपर है। हाँ टिश्यू पेपर किस लिए काम आता है?
1: पोछने के लिए।
0: क्या पोछने के लिए?
1: खाना।
0: खाना पोछने के लिए। वेरी गुड। और भी पसीना भी पोछ सकते हैं?
1: पसीना नहीं मार सकते है, पसीना तो पाउडर नहीं तो ऑयल से।
0: ऑयल से पोछते हैं पसीना?
1: नहीं तो पाउडर से।
0: और पाउडर से पोछते हैं? ये तो यार आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता नहीं था। ऑयल से कैसे पोंछते हैं पसीना?
1: और बस बस
0: बस
1: हाँ
0: बस
1: हाँ
0: बस की ट्रेन
1: बस
0: बस हाँ अपनी भी बस। चलो
1: क्या बोलूँ?
0: कोई गाना सुनाओगे?
1: नहीं।
0: कोई बात करनी है फ्रेंड से? अच्छा बाय बोलो, बाय बोलने का टाइम आ गया।
1: बाय सी यू।
2: बाय फ्रेंड।
1: बाय फ्रेंड।
0: तो बच्चों ये थे ये बहुत प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। बच्चों इन प्यारे दोस्तों से मिलने के बाद अब समय है हमारे गीत का। चलिए तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आप भी कोशिश कीजिएगा संग संग गा।

और इसी गीत के साथ अब वक्त है आपसे बाय बोलने का। जी हाँ, अब हमें ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत सारा धन्यवाद ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और ये था आज का मुस्कान। मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और आपके चेहरे पर हमेशा हमेशा खिली रहे मुस्कान। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे तमिल समुदाय विशेष उत्साहित है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और रोड शो में सहभागिता भी की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। श्री स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में प्रथम चरण का कार्य 55 जिले 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। और राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6 बजे से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 से।

जो आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगी। रात 10 बजे से सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहे।

मीडिया वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब पेश है इस घंटे की खास खबर।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 181 करोड़ लाख रुपए की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदरसी और पोचानीर के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनते हैं।

करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में तंबाकू से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इस दिन को मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1987 में की गई थी। दोस्तों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट आदि शामिल हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन युवाओं और किशोरों में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तंबाकू सेवन करने वालों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हृदय रोग, दांत और मसूड़ों की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी रोग भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन रैली, सेमिनार, जागरूकता अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में छात्र छात्राओं को तंबाकू से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जा सके। दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और देश के लिए मूल्यवान योगदान दे सकता है। तंबाकू से दूरी बनाकर हम न केवल अपनी सेहत बचा सकते हैं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है बल्कि यह हमें हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा की याद दिलाता है। तंबाकू से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सेहत, परिवार और समाज की भलाई के लिए इस हानिकारक आदत से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि हर व्यक्ति तंबाकू से बचता है तो समाज स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बन सकता है। इसलिए हमें इस दिवस का महत्व समझना चाहिए और इसे जागरूकता और परिवर्तन का अवसर बनाना चाहिए। आइए साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों आजकल OTP फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी देते हैं कि OTP किसी के साथ साझा न करें। OTP, ATM पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गयी जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देव भव, पितृ देव भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहां बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने आपकी कसम इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का। हाय,
1: गम का फसाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा जी,

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल पूरा हो गया है। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये गीत था फिल्म त्रिशूल से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार थे साहिर, संगीत था खयाम का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
4: 8700001424।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का

संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत

0: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले बता दें आपको इस सभा के बाकी कार्यक्रमों की जानकारी। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर डगर विकास की ये कार्यक्रम होगा जिसमें आज का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा जिसमें आज आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिकी कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार।

और अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह की सभा में 7:20 पर सुनिए दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जो फिल्म संगीत पर आधारित होगा। रात कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में बुंदेली लोक गायन के संपादित अंश। कलाकार होंगे पुष्पलता शर्मा और साथी। उर्दू कार्यक्रम आईना आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी कल सुबह 10 बजे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल अहिर भैरव में वायलिन वादन। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। और 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक सिसकियां की 6वीं कड़ी। दोपहर 1 बजे सुनिए स्वास्थ्य दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। एक बजकर 30 मिनट पर सुनिए लोक संगीत। 1:45 पर होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2 बजे। और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा में 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। 5:30 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे कल आप सुनेंगे एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर होगा कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। और कल रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कल रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल बागेश्वरी में वायलिन वादन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं कल शाम की सभा में 7:21 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ

0: करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
2: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला के भी 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है उन गौशाला में वहाँ मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, वही गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तो 9,000 की किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति अंदेश से आपका जो रिकॉर्ड प्रति दिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
0: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI।
5: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का जय गुप्पेश भैया की राम राम। और भैया बहनों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भैया बहन कुशल मंगल होंगे। और भैया अपन देख रहे हैं कि अब हमारे लगभग सभी भैया के खेत खाली हैं। तो भैया जैसा कि हम हमेशा बता देते हैं कि खाली खेत जब अपने हैं तो अपन जो जरूरी क्रिया काम होते हैं खाली खेत में आगे की बीज बोने या खेत फसल करवे के पहले, जैसे कि अपन ऐसा करें कि गहरी जुताई करके डाल दें जिस समय बहुत बढ़िया रहता है खेत खाली है, और गर्मियों में गहरी जुताई करवे की हम हमेशा सलाह देते हैं। और भैया वैसे तो गहरी जुताई अपन चाहें तो हर साल भी कर सकते हैं, लेकिन 3 साल में एक बार करवो अपन काजे बहुत जरूरी है। और भैया जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जिस समय अपन जोन जैसे समय की जो फसलें होते हैं वह फसलें को अपन लगा सकते हैं। और भैया मट मट खेत खाली है तो अपन माटी परीक्षण भी करा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के लाने हम जैसे बताते रहते हैं कि आपको खेत के कोने कोने या बीच में से सब जगह से तनक तनक माटी लेने, लगभग 1.5-2 फुट को गड्ढा खोद के वहाँ से अपन माटी इकट्ठी करें, और जोन अब जोन जगह पेड़ पौधा हों बाग नीचे की अपन को माटी नहीं लेने, और ऐसी माटी को इकट्ठी करके वहाँ से कछु माटी लेके अपने मिट्टी परीक्षणशाला जोन होते हैं वहाँ पे अपन अपनों एक वहाँ पर पत्रक लगा के खेती की पूरी जानकारी भर के खेत को नंबर नाम पतो सब भर के और परीक्षणशाला में दें, और वहाँ से जो जानकारी मिले कि अपने माटी में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन से पोषक तत्वन की कमी है, वह हिसाब से अपन वहाँ को उपचार करें, वह हिसाब से अपन फसल करेंगे तो निश्चित रूप से अपने बढ़िया लाभ मिले हो। और भैया अपन अब बात कर रहे हैं कि जैसे कि फसल बीमा योजना की, भैया खेती भगवान भरोसे चलाते है, कमों कमों पानी भी कम बरसता है, कमों कमों ज़्यादा बरसात है, कमों कमों ओलावृष्टि भी हो जाते है, तो कमों बीमारियाँ फसल चौपट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भैया पूरे साल की मेहनत पे कछु घंटन में ही पानी बर्बाद कर देते हैं, तो जी अपनी खेती अपनी फसल इस तरह से बर्बाद भी हो सकते है। भैया ऐसे में हमारे भैयाओं के मन में सबसे बड़ी चिंता होती है कि अब घर परिवार कैसे चले, फसल में तो नुकसान होगा, और यही चिंता दूर करवे की खातिर सरकार लाई है फसल बीमा योजना। भैया फसल बीमा योजना को मतलब यही है कि आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खराब हो जाए तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करवे में आपकी मदद करत है। यानी कि भैया किसान की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद नहीं होते। भैया सोचो कि अगर आपने जैसे कि गेहूं चना सरसों धान सोयाबीन जिस सभी फसलें बोई, खेत तैयार करे, बीज डालो, खाद डाली, सिंचाई करी, मेहनत करी, वहाँ में अपन ने कई हजार रुपया खर्च भी कर दिए, फिर अचानक से कोई बारिश होने लगी, ओला या तूफान आ जाए, फसल खराब हो जाए, तो अब जाए स्थिति में फसल बीमा आपके लाने ही सहारा बन सकते है। और योजना के तहत भैया बहुत कम प्रीमियम जहाँ में देवन परत है अपनी फसल के बीमा अपन जहाँ में करा सकते हैं, कम फसल कम बीमा प्रीमियम पे जहाँ में चाहिए कि खरीफ फसलन के लाने किसान भैया को 2% और रवि फसलन के लाने 1.5% और व्यापारिक फसलें या बागवानी फसलन के लाने 5% प्रीमियम की राशि देना पड़ता है, बाकी राशि सरकार जमा करते है। अब भैया इतने कम खर्च में कहूँ आपकी पूरी फसल सुरक्षित हो जाए तो जासे बढ़िया बात का हो सकता है। और अब बात करते हैं अपन के बीमा करावे के लाने जहाँ में काका कागज लगाते हैं, जहाँ भैया आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खसरा खतौनी, जमीन के दस्तावेज, मोबाइल नंबर और बोई गई फसल की जानकारी, और यही दस्तावेज के संग लेके हमारे किसान भैया बैंक में या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि से संबंधित विभाग जोन होते हैं वहां में जाके अब खेत को बीमा करा सकते हैं। एक बात बहुत जरूरी है भैया कि कहूँ मान के चलो आपकी फसल खराब हो जाए तो अपन चुप ना बैठे, इंतजार नहीं करना है, नुकसान होता ही 72 घंटे के भीतर अपने बीमा कंपनी कृषि विभाग संबंधित अधिकारी को सूचना देना है,
और समय पे सूचना देवे से सर्वे हो जाते और दावा मिलवे पे आसानी भी रहते। तो किसान भैया, कई बार किसान की जानकारी के अभाव में बीमा अपन नहीं कराउते हैं या नुकसान होवे पे सूचना नहीं देते हैं तो बाद में पछतावा ही रह जाते हैं। जैसे जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि अपन को क्या काम करना चाहिए, कोनो फसल बीमा करावे के बाद भी कोनो आपदा आ जाए तो। और भैया, बीमा केवल पैसा पावे की योजना नहीं है, ये हमारे किसान भैयाओं के आत्मविश्वास की योजना है। जब किसान भैया का जो भरोसा होता है कि नुकसान होवे पे कछु सहायता मिल जाए तो वह नई नई तकनीक अपनाते हैं, खेती अच्छे से करते हैं और हिम्मत से करते हैं। और भैया अब बात अपन जो फसल बीमा ही कर रहे हैं तो जो हमें हम जी और क्या हो जाएंगे कि आज के समय में मौसम को कोनो भरोसा भी नहीं रहेगा है, कमाऊँ असमय बारिश, कमाऊँ लू, कमाऊँ ओलावृष्टि, ऐसे में समय में फसल बीमा किसानों के लाने सुरक्षा कवच बन गया है और सुरक्षा कवच को अपन काम करते हैं। तो जब भैया जैसे सभी किसान भैया बहनों से हम यही कहेंगे कि आप समय पर अपनी फसल को बीमा जरूर कराएं, बीमा की अंतिम तारीख को ध्यान रखें और सभी जानकारी सही सही भरें। भैया अगर कहूँ आपकी केसीसी बैंक में है तो वहाँ में ज़्यादा अपने मेहनत नहीं करने, एक बार वहाँ बैंक में जाकर सूचना देना है तो अपने आप बीमा हो जाते। और अपन ऐसा भी नहीं है कि बीमा कराओ आप पे, सरकार को जरूरी है। अगर आप चाहें आपको बीमा नहीं चाहिए तो एक आवेदन देके बैंक में अपन चाहें तो बीमा नहीं भी हो वो अपने आप। और भैया फसल बीमा कराओ, खेती को सुरक्षित बनाओ, मेहनत की कमाई बचाओ और खुशहाल भविष्य अपनाओ, हम तो यही कहेंगे। और भैया अपन यही क्रम में एक चर्चा का विषय और लेके आए हैं, जी पे हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, टपक सिंचाई क्यों और कैसे। आजकल अपन देख रहे हैं आज के समय में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन जा रही है। और भैया भूजल स्तर सने सने नीचे गिरत जा रहा है, बारिश को समय और मात्रा भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में भैया खेती में पानी की सही उपयोग करवो बहुत जरूरी है। जई आवश्यकता को पूरी करवे काजे अपन काजे टपक सिंचाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी को काजे पाइप और ड्रिप के माध्यम से सीधो बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाओ जाऊ थे। जैसे का फायदे भैया कि जैसे पानी की बर्बादी नहीं होते और पौधे को उतिक ही पानी मिलता है जितने बिने आवश्यकता होते। और भैया सामान्य सिंचाई में खेत में पानी भर जाऊत है, जा दौरान मुलक पानी बास बन के उड़ जाऊत है या बहकर भी चलो जाऊत है। जैसे अपन जो पुराने ढर्रे से कर रहे हैं और हिसाब से सिंचाई कर रहे हैं तो वहाँ में यही समस्या देखने में आता है। पर भैया टपक सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं और जैसे पानी की बचत तो होता है और जैसे संग संग पौधे भी स्वस्थ रहते हैं, तो ऐसे भैया फायदे हैं। और अब अपन बात करें कि अपन काजे टपक सिंचाई अपनानी का चाहिए, तो भैया जहाँ में सबसे बड़ा लाभ यही है कि पानी की बचत टपक सिंचाई से 50 से 70% तक हो सकते हैं। जो अपन पहले एक एकड़ में सिंचाई के लाने हजारों लीटर पानी लगत है तो भाई अब टपक सिंचाई प्रणाली से मुलक कम पानी में काम चलने लगो है। दूसरा लाभ भैया चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि, जैसे पौधों को सही समय पे सही मात्रा में पानी मिलते और बढ़वार भी अच्छी।

जहाँ में उत्पादन हो रहा है, बीज हो रहा है, बाकी बढ़िया गुणवत्ता होता है और उत्पादन में वृद्धि तो होता ही है। तीसरा लाभ यह हो जाइए कि अपने टपक सिंचाई से कि जो अपन उर्वरक खेती में दिए थे बिन काजे डाल में बड़ी परेशानी आते हैं, अब जो अपन टपक सिंचाई के संगे उर्वरकों को बेहतर उपयोग कर टपक सिंचाई के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों को सीधे जड़ों तक पहुंचा सकते हैं और उर्वरकों की बचत होते हैं, पौधे का जो लाभ भी मिलते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी होते हैं। भैया क्या होता है कि अनावश्यक पानी पूरे खेत में नहीं फैलाते हैं, सीधे जो ना अपनों फसल पौधा होते हैं बाकी जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं, तो आसपास पानी ना फैलवे से जो खरपतवार उगत हैं वो नहीं उगते, तो बाँ में भी जहाँ से बढ़िया नियंत्रण होते हैं। ऐसे मुलक फायदे हैं भैया सिंचाई की। तो भैया अपन का जो सिंचाई की अगर विधियाँ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अपन फसल तो अच्छी अच्छी लेंगे, पानी की भी बचत करेंगे, बिजली की भी बचत करेंगे, समय की भी बचत करेंगे और फसल को उत्पादन भी बढ़िया लेंगे। और भैया जैसे कि रोजीना हम आपके लाने एक ना एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं, कहूँगा आपके काजे हम खेती से संबंधित जानकारी वाली भेंट वार्ता सुनवाते हैं, कहूँगा अपने शरीर के लाने का क्या बीमारी है और उनको स्वस्थ कैसे रखो जाए जिस संबंध में भी भेंट वार्ता लेके आते हैं। तो आज भैया एक हम भेंट वार्ता लेके आए हैं जोड़ों का दर्द कारण लक्षण एवं उपचार, जी में वार्ताकार हैं डॉक्टर पंकज शर्मा और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल और पुनः प्रसारण कर रहे हैं हम जो भेंट वार्ता। तो सुने भैया आप जो भेंट

श्रोताओं नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह की भेंट वार्ताएं सुनवाते हैं, जानकारियां देते हैं और ये सब आपके जो व्यवसाय है खेती से संबंधित उसको तो प्रभावित करता ही है, उसमें आपको ज्ञान देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद का स्वास्थ्य। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे आप जीवन को आगे चला पाएंगे या आपका जो व्यवसाय है आप उसे कैसे सही ढंग से स्मूथली चला पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो खुद का स्वस्थ रहे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसी के हिसाब से तरह तरह के चिकित्सक हैं, लेकिन आज जिस विषय

0: पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है हड्डियों के जोड़, कारण, लक्षण और उपचार। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां और हड्डी से संबंधित कई बार जोड़ों में, जॉइंट्स में दिक्कत आने लगती है और दर्द होता है, और दर्द होने के कारण फिर हम जो भी हमारा काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो भी आज हमारे साथ हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज, जो शिवपुरी की आम युवा में कहा जाता है, उसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ कहा जाए, विभागाध्यक्ष कहा जाए, डॉक्टर पंकज शर्मा, आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, सभी सुनने वालों के बीच में स्वागत करते हैं।
1: सभी को मेरा नमस्कार
0: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय मैंने बताया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, परिपक्व होता है आदमी इंसान, कई तरह की ऑर्थो से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोग आने लगते हैं, और एक अमूमन जो रोग आया वो जोड़, जॉइंट्स पेन। तो ये क्यों होते हैं और पहचान क्या है कि ये जॉइंट्स पेन है, इस विषय में?
1: जितने भी जोड़ हैं शरीर के, वो जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा चलना, फिरना, बैठना सभी जोड़ों से होता है। तो जोड़ों की बेसिकली जो बीमारी है वो बुजुर्गों में होती है, 60 वर्ष के बाद या 65 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को जोड़ से तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक उम्र का भी लक्षण है। दूसरे तरीके के जोड़ में कई तरह की बीमारियां होती हैं, या फिर पुराना चोटिल जोड़ है, या फिर जो है कई तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें कि जोड़ अर्ली यानी कि शुरुआती अवस्था में ही इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब उन जोड़ों की बीमारियाँ होने लगती हैं। इनके मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो सबसे मुख्य लक्षण दर्द है, क्योंकि जो भी मरीज हमारे पास आता है वो दर्द को लेके आता है। इसके साथ साथ उसमें लालिमा भी हो सकती है, सूजन हो सकता है, जकड़न हो सकती है, और उसको चलने में दिक्कत आ सकती है। ये प्रमुख लक्षण हम कहें किसी भी जोड़ के होते हैं। जोड़ शरीर के किसी भी जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि कंधे का है, कोहनी का है, कलाइयों का, और हम आमतौर पर देख रहे हैं कि घुटने का दर्द लेके ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं।
0: डॉक्टर साहब, चलने का आपने जिक्र किया, तो चलने का संबंध तो सिर्फ पैरों से है, लेकिन जॉइंट्स तो हमारी एल्बो भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम लेते हैं हम लोग टेनिस एल्बो, जो खिलाड़ियों में ज़्यादातर आती है, और खिलाड़ी यूथ होगा, तो किसान परिवार में उसका जो बच्चा है, जो यूथ है, लेकिन समय के साथ पिता के साथ वो व्यवसाय में मदद कर रहा है और फिर वो श्रम साध्य काम कर रहा है, तो उसको भी ये संभावना हो सकती है। कोई भारी चीज़ उठा रहा है, वहाँ पर भी जॉइंट्स का पेन हो सकता है, हमारी एल्बो में हो सकता है, हमारी कलाई के जोड़ में हो सकता है। तो पहचाने कैसे? आपने कहा दर्द, कई बार दर्द आदमी पहचान नहीं पाता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक दर्द होगा?
1: देखो, कोई भी जोड़ है वो एक तो जोड़ के पास दो हड्डियों का मेल होगा, साथ में उनको जोड़ने के लिए तंतु होंगे एवं मांसपेशियां होंगी। तो जोड़ का दर्द और जोड़ के आसपास का दर्द, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जोड़ यानी कि हड्डियों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से है, उनके ऊपर जो चिकनी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके जोड़ मतलब बीमारी में इन्वॉल्व होने के वजह से, या उसके आसपास की मांसपेशियों के वजह से है। तो मांसपेशियों का जो दर्द होगा वो जॉइंट के आसपास तो होगा, लेकिन वो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको इतना प्रभावित नहीं करता है, मूवमेंट कर पाता है व्यक्ति। लेकिन अगर जोड़ के अंदर है तो वहाँ सूजन आएगी और उसका जो चिकनी लेयर है उसमें भी खराबी आएगी, तो उसकी मूवमेंट भी प्रभावित होती है, यानी कि उस हाथ को चलाने में उसको तकलीफ होगी। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, तो ये एक तरह का जो टेनिस एल्बो है ज़्यादातर यंग अवस्था में लोग, या फिर 30 से 40 या 50 वर्ष के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका नाम टेनिस एल्बो के साथ साथ इसको ओवर यूज सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब किन्हीं मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग कर लिया, जैसे टेनिस खेलने वाले। तो नॉर्मली इसका नाम टेनिस खेलने वाले दिया है, लेकिन ये उन महिलाओं में जो खाना पकाने के लिए भारी कचड़ी का उपयोग करती हैं या फिर भारी झाड़ू उपयोग करती हैं, तो उनमें भी टेनिस एल्बो हो जाता है। तो अगर जोड़ इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें सूजन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर तंतु इन्वॉल्व हुआ है तो वो उस पॉइंट पे पेन देगा, उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें वो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। दोनों के इलाज में भी कहीं ना कहीं अंतर होता है।
0: अब क्या इनका इलाज वर्तमान में संभव है?
1: देखो, जो अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और उनका निरंतर उन पर शोध का कार्य चल रहा है कि और अच्छे से अच्छा क्या इलाज हम कर सकते हैं। साथ ही इस पर भी शोध चल रहा है कि उन बीमारियों को शुरू में

0: ही रोका जाए जिससे वो बीमारियां ना हो। जैसे हम घुटनों के दर्द की ही अगर बात करें तो हमारा जो घुटना है वो 40 वर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा लक्षण देने लगता है। मतलब कहते हैं कि जी बुढ़ापा का पहला जो है ट्रिगरिंग सिंबल है, ट्रिगरिंग पॉइंट है
1: जी।
0: तो इस लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम इस चीज़ को भांप लें और हम अपने जीवन की जो दिनचर्या है, अपने खान पान का व्यवहार है, कसरत है, व्यायाम है, अच्छा भोजन है जिसमें कि कहें कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, तो इन रोगों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं या इनकी गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे कि उम्र के साथ आए तो लेकिन बहुत धीमी गति से आए। जैसा कि हमने देखा है कि एक 80 वर्ष के बाबा जी हैं, उनके घुटनों में बदलाव तो बहुत है लेकिन वो कभी दर्द नहीं कहते और रोज़ घूमते रहते हैं और कहते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, भले ही वो हड्डियाँ उम्र के साथ टेढ़ी हो रही हैं
1: जी।
0: तो वो रोग उनको धीरे धीरे आया
1: जी,
0: है ना। तो उसको रोग ना कह के उसको हम कहते हैं कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है,
1: समय का बदलाव है।
0: लेकिन वही प्रॉब्लम या वही बदलाव अगर 60 वर्ष पे ही आ जाएगा तो व्यक्ति का घुटना धीरे धीरे और खराब होगा और आगे चल के उसको बदलना भी पड़ सकता है,
1: नी रिप्लेसमेंट पे जाना
0: पड़ सकता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम रोग को समझें और भविष्य में उनका क्या होने वाला है उसको पहले ही समझ के उनको रोकथाम के इलाज करें।
1: इंसान को कौन सी दिनचर्या या कौन सा पोस्चर अपनाना चाहिए या कौन से पोस्चर से बचना चाहिए ताकि संभावना को थोड़ा लंबा किया जा सके।
0: देखो, हड्डी के बारे में कहा गया है कि हड्डी का जो निर्माण है वो 30 से 35 वर्ष तक होता है
1: जी।
0: मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो 35 से 40 वर्ष तक बनती है।
1: यानी हड्डी पूर्ण युवा 40 की उम्र में होती
0: 40
1: है।
0: 40 की उम्र तक उसमें हम जैसे धन जोड़ते हैं वैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही प्रतिवर्ष हम माने तो 0.5% के हिसाब से हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाती हैं
1: पर ईयर।
0: तो इसका मतलब ये है कि जो धन हमने कमाया है यानी कि जितनी हड्डी हमने मजबूत की उसको हमें आगे उपयोग करना है
1: जी।
0: तो जिन महिलाओं में या पुरुषों में जिनमें हड्डियाँ शुरू से कमजोर हैं तो संभावना है कि उनको हड्डियों के रोग और जोड़ों के रोग जल्दी उम्र में ही आ जाएंगे। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की, अपना अच्छा व्यायाम किया, अपने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक पे भी ध्यान दिया, या जो खिलाड़ी हैं उनका बोन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कि लंबे उम्र तक भी उनके हड्डियों और मांसपेशियाँ उनको परेशानी नहीं देती हैं। तो प्रिवेंशन में यही कहना है कि हमें शुरू में कमाना है, अपने हड्डी को प्यार करना है। हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे फास्ट फूड पे जा रहे हैं जिसमें कि कोई पोषक तत्व नहीं है, तो उनका हम क्या सोच सकते हैं, क्या उनका हड्डी का निर्माण उतनी मजबूती से हो पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 30-35 तक बनना है, अगर 20% कमाया हो तो उसी में से आगे खर्च करना है, और 100% कमाया तो उसमें से आगे बढ़ना है। और महिलाओं में और प्रॉब्लम है, जैसे महामारी बंद होने के बाद शरीर में हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी अगर कमी होना चालू हो जाती है तो महिलाओं में वो 0.5% की बजाय अब 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से हड्डियाँ कमजोर होना लगती हैं।
1: हमने समस्या थोड़ी जो नेचुरल उनकी जो प्रोसेस है उसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा है।
0: गाँव में हमने अपनी दादी या किसी महिला को देखा है कि वो झुक के चलती हैं, पुरुष कम मिलेंगे महिलाएँ ज़्यादा, क्योंकि वही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, हड्डियाँ कमजोर रहीं और समय के साथ साथ वो झुकना चालू कर देती हैं
1: जी।
0: तो जी
1: ये समस्या है। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज एक शिवपुरी के लोगों के लिए, शिवपुरी ज़िले के लोगों के लिए और आसपास के अंचल के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। आप इसके अस्थि रोग के रूप में विभाग अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या मुनासिब कब उसको जाना चाहिए ताकि वो इलाज करा सके, आपसे मिल सके, आपकी टीम से मिल सके और वो स्वस्थ हो सके?
0: जब से मैंने ये मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और अस्थि रोग से संबंधित या उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए कई हमने चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है। रिमेटोलॉजी, जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण जोड़ों के इलाज के लिए एक अलग ही क्लिनिक हम वहाँ चला रहे हैं
1: हॉस्पिटल
0: सरकारी में,
1: मेडिकल कॉलेज,
0: हाँ, जिसको ऑर्थो रिमेटोलॉजी नाम दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि वो रिमेटोलॉजी के 10 से 12 मरीज जो कहीं दूरस्थ इलाकों से बड़े शहरों में इलाज कराने जाते थे वो आज मेरे पास आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे, उनकी जांचें हो रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं और मरीज हताश होता है, कभी इस डॉक्टर को दिखाएगा कभी उस शहर में जाएगा। तो पहला हमारा

0: काम होता है उसकी काउंसलिंग करना कि अब आज से आपको कहीं जाना नहीं
1: mentally
0: है,
1: उसे प्रिपेयर
0: मेंटली प्रिपेयर करना जिससे वो दवाई ना छोड़े और डॉक्टर से नियमित सलाह ले। क्योंकि इस व्यस्तता के शेड्यूल में हम देखते हैं कि प्रतिदिन 200 मरीज आते हैं ऑर्थो में, तो हम ऐसे में उन मरीजों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में मंगलवार का दिन मेरा चूंकि थोड़ा सा फ्री रहता है या कम वर्क रहता है, तो मैंने वो अलग से रूमेटोलॉजी क्लिनिक अलग से संचालित की है जिससे लोग यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो आएं, एनरोल करें।
1: यानी कहने की तात्पर्य यह है कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी जो अस्थि रोग से संबंधित या हड्डियों के जोड़ से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, एक आम इंसान की समस्याएं हैं, उसका इलाज संभव है, जहां पर आप और पूरी टीम के साथ हम व्यक्ति इलाज करा सकता है। खान पान का ध्यान किस तरह का रखे कि उसे जोड़, मतलब कौन सा विटामिन या कौन सी सब्जियों पर उसे फोकस करना चाहिए ताकि कम से कम दर्द हो।
0: जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा तत्व जो शरीर के अंदर जो टूटन है उसको करेक्ट करे, उसको सही करे। तो बच्चों में ये प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए उनको चोट भी लगती जल्दी हील हो जाता है। एडल्ट में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं चोट लगी और दो चार दिन में ठीक हो जाते, बैलेंस कर लेता है, लेकिन फिर 40 के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट जो अच्छा वाला तत्व है वो कम होना चालू होता है, और उसके कम होने से खराब वाला बढ़ता है तो वो डैमेज करना चाहता है। ये अच्छा तत्व हमारी हरी सब्जियों में, सभी फलों में, दूध में, और बिना मिलावट वाला भोजन करने से इन सब तत्वों से हम बढ़ा सकते हैं। जिसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है जिससे हमारे लिगामेंट मजबूत हैं। जितनी मोटी रस्सी होगी जोड़ों के आसपास उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और उतना जोड़ों की समस्याएँ कम रहेगी।
1: लिगामेंट्स रेप्चर नहीं होने चाहिए। हाँ, खान पान बेहतर होना चाहिए और थोड़ा वक्त अपने शरीर के लिए भी वर्जिश के मोड में दें। यही कहना चाहते हैं ना। हाँ, कि कसरत करें,
0: डेली कसरत, माइल्ड कहें कि थोड़ी कसरत डेली जरूरी है, और कसरत के लिए कहीं जाने घर में ही आसानी से हो सकती है। अगर आप डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक भी करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ा सा तेज चहलकदमी करते हैं, तो वो भी काफ़ी होता है इसके लिए।
1: बातचीत बहुत अच्छी हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता इस हड्डियों के जो जोड़ से संबंधित समस्याएं जो आम इंसान में आती हैं और बचने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज इसके लिए है, वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं, अस्थि रोग विभाग में जा सकते हैं और उसका इलाज होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ बातचीत में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी जो भेंटवार्ता, जी को विषय है तो जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण एवं उपचार। यहाँ में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज शर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया वाकई में डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बताई कि हमें अपने जीवन को कैसे जीने चाहिए, संयमित जीवन जीने चाहिए, जहाँ से आजकल ये समस्याएँ देखने में बहुत आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं भैया हम आपसे यही कहेंगे कि वाकई में अभी अपना जो अपन जवानी में जो स्वास्थ्य रूपी पूंजी को, धन को, अपन संचय को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये ही धन पूंजी अपन का ये बुढ़ापे में खर्च करने में काम में आउते हैं। तो ऐसे ही अपन जीवन जिए, इससे आगे चल के अपने कोनो समस्या ना आए, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने शरीर पे भी ध्यान दें, अपने लिए भी समय निकालें, ये सब बातों का ध्यान रखें। और भैया बातें चर्चा और भी कई बहुत हो गई हैं, लेकिन पर हमें आपके मनोरंजन को भी पूरा ध्यान देते, मनोरंजन के लाने एक सुनवा दें बढ़िया सा लोकगीत, जो है जनमई के पहले, जी के गायक कलाकार हैं बाबूलाल राजपूत। तो सुने भैया

भैया अभी आपने सुना जो लोकगीत। और भैया अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अपन कम लागत में अधिक आमदनी हेतु बांस का करें उत्पादन। तो भैया जय किला ने हम ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो कम लागत में तैयार होते और लंबे समय तक अपन काजे आमदनी देते है। जी को बाजार में हरदम खेचम खेच मची रहो थे और हम बता रहे हैं बांस की खेती की। यह बांस काजे गरीब की लकड़ी भी कहो जाओ थे। पहले बांस को उपयोग अकेले घर बनावे टपरिया काजे टोकरियां डलियां और खेती किसानी के औजार बनाने में होते तो। पर भैया आज के दिना अपन बात करें तो इको उपयोग फर्नीचर प्लाईवुड अगरबत्ती कागज उद्योग सजावटी सामान और बड़े बड़े निर्माण के कामन में बिलात पैमाने पे उन लगो है। ई की वजह से बांस की खेती अब हमारे किसान भैयाओं के लाने कमाई को एक नंबर साधन बन के उभर रहा है। भैया बांस एक ऐसा पौधा है जोन खां एक बेर लगा दो और कई सालन तक पैदावार देते है। जाकि सबसे बड़ी खूबी यही है कि इखां हर हर घरी बोवे की जरूरत नहीं है। जोन एक बेर पौधा जम जाए तो हर साल नए नए बांस जामे से फूटत रहते हैं और किसान भैया खां लगातार आमदनी होते रहते हैं। तो भैया वो बांस की खेती के लाभ की अगर अपन बात करें तो पहला लाभ तो यही है भैया कि कम लागत। भैया दूसरी फसल के मुकाबले बांस की खेती में घरी घरी बीज खाद के मुकाबले बांस की खेती में घरी घरी बीज खाद के मुकाबले जहाँ पैसा खर्च करना अपन का जो नहीं पड़ता है। और दूसरे लाभ की बात करें भैया कि लंबे समय तक जहाँ में पैदावार बनी रहते हैं एक बेर अपन जाए लगाएं और बांस के पौधे का जाए और 30 से 40 सालन तक जाके अपन पैदावार ले सकते हैं। और भैया तीसरा लाभ यही है कि कम पानी की जरूरत होती है जहाँ एक बेर जड़ जो पकड़ ले तो उसके बाद कम पानी सिंचाई में भी ये गजब की बढ़त लेते हैं। किसान भैया बांस की खेती वैसे तो सभी ढंग की जमीन में करी जा सकते हैं पर जोन जगह पानी नहीं रुकत है ऐसी दोमट वाली मिट्टी के लाने सबसे उत्तम मानी जाऊत है। मतलब यही है कि जोन जगह लंबे समय तक जल भराव रहता है उस जगह अपन बांस की खेती कतई ना करें ना लगाना चाहिए। खेत में पानी भराव हो तो जैसे कहो तक पौधा की जड़ें जहाँ में सड़न लगाते हैं। तो जैसे भैया अपन ऐसी जगह बांस की खेती ना करें। और भैया जी कहेंगे हम तो के राष्ट्रीय बांस मिशन से किसान काज उद्यमी बनावे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से अवसर बढ़ावे के लाने सरकार देश भर में कृषि से जुड़ी कई योजना चला रही है जोन से न केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं बल्कि किसानों की आय भी बढ़ रही है। तो भैया राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मध्य प्रदेश में बांस उद्योग बनाने के लिए सरकार बहुत ही ज्यादा सब्सिडी दे रही है उपलब्ध करा रही है। और बांस की उपभोक्ता तो चाहे अपन देख ही रहे हैं भैया के चाहे जहाँ कागज रद्दी पेपर घर में फर्नीचर प्लाईवुड बनाते हैं और कुल्फी की डंडी भी लकड़ी की चम्मच भी कई चीजें ऐसी हैं भैया के तेल गाड़ियों में भैया पेट्रोल में जोन होते बांस में भी एथोनॉल जो मिलते हैं भाग वो भी बांस से बनते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनते भैया को अपन सोच नहीं सकें। बहुत से अपन जो बर्तन डलिया खूब सूप बांस से ही बनाते हैं CNG में कछु एक चीज़ ऐसी मिलाई जाता है जो बांस से बनाते हैं बांसरी बनाने में बांस का उपयोग होता है। और भैया मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जोन से बांसों को लगाने से अपने वहाँ में फायदा है। तो भैया बांस लगाने में कछु बातों को अपन ध्यान रखें कि जहाँ में लाइन से लाइन की दूरी लगभग 12 फीट से रखी जाती है। और भैया बांस की खेती को अपन मेड़ों के किनारे भी शुरुआत कर सकते हैं। तो भैया ऐसे अपने बांस के मुलक फायदे और चलत चलत हम आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो आज को अधिकतम तापमान रहो 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा भैया 26 डिग्री सेल्सियस।

सेल्सियस और हवा की गति रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा और मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 39%। तो भैया जय वतन के संगे दीजिए इजाज़त अपने रूपेश भैया को कार्यक्रम चौपाल से, जब तक के लाने राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेयजल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए। फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
2: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
3: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में,

सब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं, और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है, और खास तौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन

0: में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की और दो एथलीट हम बात करेंगे तो वरिंदरवर सिंह और अनिमेश इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहाँ पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर संस्कृति विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी।

0: जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
1: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गीर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
0: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
1: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहां पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं, आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
0: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का यह संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव है। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम

0: हमसे भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके।

0: इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, न उसके पास पैसा है, न उसके पास साधन है, न उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडिड कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं।
2: हाँ। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, पीएमई विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईआईटी है, जेई है, नीट है, पीएससी है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। पीएमई विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
3: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें से दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है दीक्षा पोर्टल में। स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है भारत के सभी राज्यों, और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे, और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
4: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है, तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
1: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
4: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
4: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
4: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी हैं इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ, जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4

31 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: Girija Amma ji, karib 15 school chalati hai. उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage.

0: स्वनिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मौसूफ सिलीगुड़ी में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में साबिका TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हस्सा जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन नेक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्या नगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंगटुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। BJP ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. in our regular program, Anugunj, based on the archival

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी

0: क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
2: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बात चीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थाना विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरि युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री अस्नापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री अस्नापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and party in the Ravivasari Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of

0: नमस्कार
1: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held